اس شان سے جہان میں فرمائی رہبری، اس شان

0: FM 100's time check. It's 7 a.m. This public service message is brought to you by FM 100. गाड़ी चलाते वक्त ये ना सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कानूनों की पाबंदी कीजिए।
1: facebook.com/fm247365
2: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
3: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: 7:15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: facebook.com/fm247365 fm247365

0: पानी नो परेशानी।
1: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए।
2: दिस मैसेज वॉज ब्रॉट टू यू बाई FM 100 पाकिस्तान।
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365 FM 247365

0: आज ही अपने बैंक से बनवाएं।
1: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
2: This program is brought to you by
3: Tabal Family Mixture Line, Umrah Par Jaye,
2: and

0: 15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: तबाल फैमिली मिक्सचर. लाएं, उमराह पर जाएं एंड

0: पानी नो परेशानी।
1: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशन्स ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111178 37।
2: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मरतबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमत, तो फिर कहीं और क्यों जाए। तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियात। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।

0: and Pakistan ka best bank, Mizan Bank, the premier Islamic bank.
1: Pakistan humse hai, hum acche to Pakistan acha, to aao ehd karein ki jaisa Pakistan hum dekhna chahte hain, वैसे खुद बनकर दिखाएंगे क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान अज़्म-ए-इस्तेहकाम मुस्तहकम पाकिस्तान
2: मुफाद-ए-आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया
3: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
4: FM247
5: 365 किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत
6: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे न लगाएं
5: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं वॉक नहीं करता
7: मुझे भी लोग मोटी कहते हैं मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ
6: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या
5: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ सिर्फ वॉक से ही कम नहीं
7: मोटापा एक बीमारी है सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी
6: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते
7: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए
5: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें
6: और इस वजन की असल हकीकत को समझें
5: आइए वेट से आगे का सोचें
2: यह पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया
8: HBO फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBO फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBO

0: FM 100 traffic update.
1: ट्रैफिक अपडेट के साथ मैं हूं फारूक इजहार। शहर कराची की सड़कों और शाहराहों पर ट्रैफिक की इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरह है। एफ 100 को मिलने वाली इत्तला के मुताबिक पावर हाउस चौरंगी से लालन चौरंगी की जानेब आने वाले ट्रैक पर कुछ ट्रैफिक का दबाव अब से कुछ देर पहले ज्यादा हो गया था और उसकी वजह एक दरमियान में गाड़ी खराब हो गई थी जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही थी। अब उस गाड़ी को वहां से हटा दिया गया है। वो तमाम लोग जो पावर हाउस चौरंगी से नागन चौरंगी की जानेब सफर करना चाहते हैं बासानी रास्ते को इस्तेमाल कर सकते हैं। कयूमाबाद चौरंगी से वो ट्रैफिक जो डिफेंस मोड की जानब जा रहा है अख्तर कॉलोनी सिग्नल के अतराफ में कुछ स्लो में उप कर रहा है, लिहाजा अपने टाइम को मैनेज करते हुए आए ताकि बर वक्त अपनी मंजिलों पर पहुंच सके। मजीद अपडेट रहने के लिए सुनते रहिए एफएम 100 पाकिस्तान।
0: दिस ट्रैफिक अपडेट वॉज ब्रॉट टू यू बाय FM 100।

0: your location for maximum music.
1: It's 9:30 a.m. This time check is brought to you by
2: AGS Tubular Battery hai to dil ko hai aaram.
3: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
4: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: FM 100 Like us on facebook.com/fm247365 FM 247-365.

0: AM. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Battery hai to dil ko hai aaram.
2: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
3: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबिन सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
4: कपाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास. उमरा लिखे 02111182725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं. कपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं.
5: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड. बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका. नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए. देखा ना, मिरेकल्स हैपन.
6: पेपा कार्ड है
7: तो फायदा है.

de FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: your location for maximum music.
1: It's 10:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
3: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
4: पेपा कार्ड है?
5: है तो फायदा है,
6: पेपा है
7: तो ऐड टू कार्ड है,
6: पेपा है
8: स्टोर ऑनलाइन एन एटीएम हर जगह चले, फायदे पे फायदा दे.
3: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
9: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादेही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है. इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
10: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
11: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है. सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है. अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें. डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें. पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें. गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें. लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें. मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें. याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है. डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत.
10: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
12: क्या आप जानते हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जानिब से मुख्तलिफ वैल्यू एडेड सर्विसेज फराहम की जाती हैं? इन सर्विसेज में रिंगटोन्स, ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स, मिस कॉल अलर्ट, इंटरनेट बंडल्स, गेम्स और दीगर मालूमाती सहूलियात शामिल हो सकती हैं. ताहम बाज़ औकात ये मुशाहिदा सामने आया है कि सारिफ की इजाजत के बगैर कोई वैल्यू एडेड सर्विस फाल हो जाती है या बैलेंस से रकम कट जाती है, जबकि सारिफ को इसका इल्म भी नहीं होता. याद रखें कि वैल्यू एडेड सर्विस की फालियत के लिए सारिफ की तस्दीक जरूरी होती है, जिसके लिए अमूमन ओटीपी की तस्दीक या मखसूस यूएसएसडी को डायल करना लाजिम होता है. याद रखें, पीटीए टेलीकॉम ऑपरेटर्स को वैल्यू एडेड सर्विस खुदकार तौर पर एक्टिवेट करने की इजाजत नहीं देता. अगर आपने ना तो ओटीपी शेयर किया है और ना ही कोई कोड डायल किया है, तो ऐसी सर्विस फाल नहीं होनी चाहिए. अगर आपके साथ भी ऐसी सूरत हाल पेश आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं. सबसे पहले अपने मुतल्लिका टेलीकॉम ऑपरेटर से राब्ता करें और बाकायदा शिकायत दर्ज करवाएं. ऑपरेटर आपको एक शिकायत नंबर फराहम करेगा. अगर मुकर्रर वक्त के अंदर आपका मसला हल ना हो तो आप पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. शिकायत के अंदराज का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले वेबसाइट complaint.pta.gov.pk पर जाएं. शिकायत के अंदराज के लिए सारिफ को अपने नाम और शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए एक यूजर प्रोफाइल बनाना होगा. इसके बाद साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करें और मतलूबा मालूमात फराहम करें, जिनमें नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, राब्ता नंबर, शहर का नाम और पासवर्ड शामिल होंगे. इसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें और मौसूल होने वाला वन टाइम पासवर्ड दर्ज करें. अकाउंट बनने के बाद साइन इन करें और अपना CNIC और पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन हो जाएं. याद रखें कि आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर ही आपका यूजर नेम होगा. लॉग इन होने के बाद बाएं जानिब मौजूद रजिस्टर न्यू कंप्लेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें. अब शिकायत की तफसीलात दर्ज करें और शिकायत की नौयत मुंतखब करें. इसके बाद शहर, सर्विस,
4: فراہم کنندہ کی قسم اور دیگر مطلوبہ معلومات فراہم کریں۔ اگر آپ کی شکایت کسی موبائل نیٹورک آپریٹر سے متعلق ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس وہ شکایت نمبر موجود ہو جو آپ کو آپریٹر کے پاس شکایت درج کراتے وقت فراہم کیا گیا تھا، کیونکہ پی ٹی اے کے پاس شکایت کے اندراج کے لیے یہ نمبر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب کمپلینٹ نمبر درج کریں اور کمپلینٹ سمری میں اپنی شکایت کی تفصیل لکھیں۔ ضرورت کے تحت متعلقہ فائل بھی منسلک کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد قواعد و ضوابط قبول کرتے ہوئے اپنی شکایت باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دیں۔ شکایت سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے پی ٹی اے کے ٹول فری نمبر 0800-55-055 پر رابطہ کریں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
13: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
14: FM 24/7/365

0: FM 100's time check. It's 11 a.m.
1: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड. बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका. नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए. देखा ना, मिरेकल्स हैपन.
2: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365.
3: Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
4: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मुहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अपराध के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: It's 11:30 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Battery hai to dil ko hai aaram.
2: Naya Pond's Body Lotion jisme hai 100 tola gold. बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका. नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए. देखा ना, मिरेकल्स हैपन.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

जो तू अच्छा लगता है, वक्त मिला तो सोचेंगे तुझ में क्या क्या देखा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। सारा शहर शनासाई का दावेदार तो है, लेकिन सारा शहर शनासाई का दावेदार तो है, लेकिन कौन हमारा अपना है, वक्त मिला तो सोचेंगे। और हमने उसको लिखा था कुछ मिलने की तदबीर करो, हमने उसको लिखा था कुछ मिलने की तदबीर करो, उसने लिख कर भेजा है वक्त मिला तो सोचेंगे। और मौसम खुशबू बादे सबा

यारों में कौन तुम्हारे जैसा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। पर या तुम अपने दिल की मानो या फिर दुनिया वालों की, या तो अपने दिल की मानो या फिर दुनिया वालों की, मशवरा उसका अच्छा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। क्यों तू अच्छा लगता है, वक्त मिला तो सोचेंगे, वक्त मिला तो सोचेंगे, वक्त मिला तो सोचेंगे। This is your music.

0: Assalamu alaikum, Pakistan.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: It's 12:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बहुत सी औरतों को माली, जिस्मानी, जहनी और जिनसी घरेलू तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है। चाहे आप किसी के शौहर, वालिद, भाई या बेटे हों, अपना स्ट्रेस और फिक्र को अपनी बीवी, बेटी, बहन या वालिदा पर हरगिज ना निकालें। हुकूमत पाकिस्तान ने घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली औरतों के लिए खुसूसी हेल्पलाइन 1099 के साथ हेल्पलाइन 1099 ऐप का आगाज किया है, ताकि हमारे इदारे उनकी भरपूर मदद कर सकें। अगर आप या आपके जानने वाले घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं, तो फौरी तौर पर हेल्पलाइन 1099 ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें। होम स्क्रीन पर अपना नाम, फोन नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करके साइन अप करें। हंगामी हालात की सूरत में, जहां आपकी या किसी की जान खतरे में हो, लाल बटन का इस्तेमाल करें, जिससे मुतल्लिका इदारे आपकी मदद के लिए फौरी हरकत में आ जाएंगे। तफसीली शिकायत के लिए सब्स बटन का इस्तेमाल करें, जिसमें आप तहरीरी शिकायत के साथ वीडियो, तस्वीर और ऑडियो सबूत भी जमा कर सकते हैं। याद रखिए, घरेलू तशद्दुद कानूनन जुर्म है और हम सबको मिलकर इसे रोकना है। तशद्दुद से तहफ्फुज आपका हक है। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: 100 FM।
4: हाय फ्रेंड्स, आई एम मिकाल ज़ुल्फ़िकार एंड टुडे आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू एज अ पब्लिक फिगर बट एज समवन हू केयर्स अबाउट योर फ्यूचर। We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: पाकिस्तान में व्हाट्सएप हैकिंग के वाकयात में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। रोजाना आम शहरी, बुजुर्ग, खवातीन, तुलबा और कारोबार से वाबस्ता अफराद अपने व्हाट्सएप अकाउंट से महरूम हो रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको दो अहम बातों पर रहनुमाई फराहम करेंगे। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो इसे वापस कैसे हासिल किया जा सकता है, और मुस्तकबिल में व्हाट्सएप को दोबारा हैक होने से कैसे महफूज रखा जा सकता है। आइए देखते हैं व्हाट्सएप हैक कैसे होता है। पाकिस्तान में आमतौर पर व्हाट्सएप हैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके। आपको व्हाट्सएप या किसी करने वाले के नाम से पैगाम आता है कि आपका अकाउंट वेरीफाई करना है, या ये 6 हिंसों का कोड भेज दे। बाज़ औकात ये पैगाम किसी दोस्त या रिश्तेदार के नंबर से आता है, जिसका अकाउंट पहले ही से हैक हो चुका होता है। लोग लाइल्मी या जल्दी में 6 हिंसों का तस्दीकी कोड शेयर कर देते हैं। बस इसी एक गलती से हैकर आपके व्हाट्सएप का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेता है। याद रखिए, व्हाट्सएप का तस्दीकी कोड कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता। ना व्हाट्सएप खुद मांगता है, ना कोई अदारा और ना कोई दोस्त। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो जाए तो फौरन क्या इकदाम उठाने चाहिए? अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो घबराए नहीं, अपने मोबाइल फोन से व्हाट्सएप डिलीट करें और दोबारा इंस्टॉल करें। साथ ही अपने दोस्तों और खानदान को किसी और नंबर से इतला दें कि अगर आपके नाम से कोई मशकूक पैगाम आए तो इस पर हरगिज यकीन न करें। अपना वही मोबाइल नंबर दर्ज करें जो व्हाट्सएप पर रजिस्टर्ड था। व्हाट्सएप आपको SMS या कॉल के जरिए 6 हिंसों का तस्दीकी कोड भेजेगा। ये कोड दर्ज करें। ज्यादातर केसेस में इसी मरहले पर हैकर की रसाई खत्म हो जाती है, क्योंकि व्हाट्सएप एक वक्त में सिर्फ एक डिवाइस को इजाजत देता है। अगर तस्दीकी कोड न आ रहा हो या पिन लगा दिया गया हो, अगर हैकर ने आपके अकाउंट पर 2-स्टेप वेरिफिकेशन पिन लगा दिया है और आप लॉगिन नहीं हो पा रहे, व्हाट्सएप आपको ऑप्शन देता है 7 दिन बाद दोबारा कोशिश करें। 7 दिन बाद व्हाट्सएप आपको बगैर पिन के लॉगिन करने की इजाजत देता है, लेकिन सिर्फ उसी नंबर पर। इस दौरान ये बातें लाजमी याद रखें: सिम कार्ड अपने पास और फॉल रखें, नंबर बंद या सस्पेंड न होने दें, व्हाट्सएप बार बार इंस्टॉल न करें, ईमेल के बगैर अकाउंट फॉल। अगर आपने ईमेल एड्रेस शामिल नहीं किया और पिन भी याद नहीं, व्हाट्सएप फिर भी 7 दिन बाद आपका अकाउंट फॉल कर देता है, बशर्ते कि सिम कार्ड आपके पास हो। सिम कार्ड सबसे अहम है। इजाफी तौर पर आप अपने नंबर और मसले की तफसील के साथ व्हाट्सएप सपोर्ट को ईमेल भी कर सकते हैं। रातों को फौरी इतला दें। अकाउंट बहाल होते ही اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں۔ میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا، براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں، اسے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن لازمی فالو کریں، سیٹنگز، اکاؤنٹ، ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن، یا ایک 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو۔ ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں، ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے، اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے، ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو۔ کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے۔ جعلی لنکس اور آفر سے بچیں، مفت انٹرنیٹ انعامات، سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں، ایسے لنکس پر کلک نہ کریں۔ واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں، سیٹنگز، لنک ڈیوائسز، اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاک آؤٹ کریں۔ فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں، اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ پن، فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں۔ یاد رکھیں، واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں۔
3: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
6: FM 24/7/365

0: Your location for maximum music. FM 100's time check. It's 1 p.m.
1: पेपा कार्ड है?
2: है तो फायदा है,
1: तो ऐड टू कार्ड है.
3: स्टोर ऑनलाइन एंड एटीएम हर जगह चले, फायदे पे फायदा दे.
0: This program is brought to you by
4: Step School से Foundation Ho Strong. Call now at 0311117837.
5: बैन अलावा सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हूँ. ऐसी ऑनलाइन एप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करती. यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है, लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है. मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं. याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे. खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
6: Like us on facebook.com/FM247365.
0: FM247365. Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
7: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
8: Keep it locked to 100 FM.
9: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है. शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां.
0: This program is brought to you by
4: Step School से Foundation Ho Strong. Call now at 0311117837.
6: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
7: FM247365.
8: Keep it locked to 100 FM.

استووا تراصوا واعتدلوا أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا

0: FM 100 पर आप सुन रहे हैं जुमतुल मुबारक की खुसूसी नशरियात।
1: It's 3:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
3: कहीं फिर से रहमो चाचा, अपना डांगा लेकर न आ जाए। वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे, मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ।
4: आमतौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई उन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं। जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है। तहफ्फुज हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं। मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पर कॉल करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
5: FM 100
0: पर आप सुन रहे हैं जुमतुल मुबारक की खुसूसी नशरियात।

Across the nation, there is only 100 FM.

0: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं फिर से रहमो चाचा, अपना डांगा लेकर ना आ जाए. वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे, मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ.
3: आमतौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है. दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं. बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्प लाइन 1099 पर कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
4: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365.
5: This program is brought to you by
6: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 03111117837.
2: अभी राजा उस्ताद आ जाएगा, फिर मुझे कमरे में ले जाकर गलत तरीके से हाथ लगाएगा और किसी को बताने से भी मना करेगा.
3: हमारे माशरे में जिनसी बदसलूकी के वाकयात सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं होते, बल्कि लड़के भी इसका शिकार होते हैं. लड़के और लड़कियों दोनों की हिफाजत का ख्याल रखें, दोनों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, अगर कोई इनकी मर्जी के खिलाफ इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्प लाइन 1099 पर कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
7: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें. डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है. दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100.
4: Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: बेबाक, आज ही अपने बैंक से बनवाए।
1: This program is brought to you by
2: the Bal Family Mixture Line, Umrah Par Jaye
1: and
3: Phoenix Laga Aur Bhul Ja, Phoenix Laga Aur Bhul Ja.
4: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे, होशियार रहें, मोहतात रहें, अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज़ इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
5: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
6: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
7: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
1: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
0: This program is brought to you by
3: Tabal Family Mixture Line, Umrah Par Jaye
0: and
4: Phoenix Laga Aur Bhul Ja, Phoenix Laga Aur Bhul Ja.
0: FM 100, like us on Facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: FM 100 traffic update.
1: पाकिस्तान एफ एम 100 पर ट्रैफिक अपडेट के साथ मैं हूँ फारूक हसन। शहर कराची की सड़कों और शहराओं पर ट्रैफिक की सूरत हाल कुछ इस तरह है। ब्रूक्स चौरंगी से कॉजवे और वहाँ से महमूदाबाद सिग्नल और बलोच कॉलोनी ब्रिज के जाने वाले ट्रैक पर ट्रैफिक का काफी ज्यादा दबाव है और वो ट्रैफिक जो इस वक्त तय्यूमाबाद चौरंगी से बलोच कॉलोनी ब्रिज में जाने जा रहा है उस पर भी ट्रैफिक का काफी ज्यादा दबाव देखा जा रहा है। लिहाजा वो तमाम लोग जिस रास्ते पे सफर करने का इरादा रखते हैं ट्रैफिक की सूरत हाल से आगा रहें ताकि बर वक्त अपनी मंजिल पर पहुंच सके। वहीं तबियत पहले के लिए छुपे रहेंगे आप मंदिर पाकिस्तान।
0: This traffic update was brought to you by FM 100.

0: It's 5:30 p.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Battery hai to dil ko hai aaram.
2: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
3: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
4: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग. स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर. एडमिशन्स ओपन. फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837.

us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: It's 5:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: पेपा कार्ड है?
4: है तो फायदा है,
5: पेपाक है
3: तो ऐड टू कार्ड है,
5: पेपाक है
6: इन स्टोर ऑनलाइन एन एटीएम हर जगह चले, फायदे पे फायदा दे।
2: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
0: This program is brought to you by
7: Tabal Family Mixture Line, Umrah Par Jaye
0: and

0: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
1: हमने आप ना कुछ तीन बार मौत देखे
2: टाइम से मनु ऐसे ही के मैं हूं कब्र से चला गया मैं नहीं बचा।
3: फिर उन्होंने साड़ी वीडियो बनाया सानू मारिया सानू कुटिया।
0: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
4: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा।
0: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देबाप के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का कयाम, मुलगीर क्रैकडाउन जारी, एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरूने मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकद्दसा की ज्यारत को जाने वाले जायरीन भी कानूनी जराए इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचें, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुनें। हुकूमत पाकिस्तान।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: बैंकिंग सहूलियात जैसा कि माइक्रो फाइनेंस एप्स, जैज कैश, इजी पैसा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अमूमन सारिफ के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ मुंसलिक होते हैं, जिसके जरिए ये अकाउंट्स न सिर्फ फाल किए जाते हैं बल्कि किसी तब्दीली की सूरत में तस्दीक के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कोई सिम आपके नाम से हटा दी जाए या तवील अरसे तक इस्तेमाल न होने की वजह से रिसाइकल होकर दोबारा जारी कर दी जाए तो यही नंबर किसी दूसरे शख्स को दिया जा सकता है, और अगर बर वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की जाए तो नया सारिफ इस नंबर से मुंसलिक आपके सोशल मीडिया या दिगर डिजिटल अकाउंट्स तक रसाई कर सकता है। ऐसे अकाउंट से की जाने वाली किसी भी गैर कानूनी, गुमराह कोनी या तौहीन आमेज सरगर्मी की जिम्मेदारी असल अकाउंट होल्डर पर आयद हो सकती है, जिसके नतीजे में कानूनी पेचीदगियां और शोहरत को नुकसान पहुंचने का खदशा होता है। इसी तरह अगर पुराने नंबर से मुंसलिक बैंकिंग या मालियाती एप्स महफूज ना की जाएं तो माली धोखाधड़ी और गलत इस्तेमाल का खतरा भी पैदा हो सकता है। अपने ऑनलाइन तहफ्फुज के पेश नजर ये इकदाम जरूर उठाएं। जैसे ही कोई नंबर अपने नाम से हटाएं या तब्दील करें, फौरन अपने तमाम सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अपडेट कर लें। अपने बैंक, माइक्रो फाइनेंस और पेमेंट एप्स में हमेशा अपना मौजूदा और फाल नंबर रखें। अकाउंट्स में मजबूत सिक्योरिटी फीचर्स फाल करें, जैसा कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और अकाउंट रिकवरी की सेटिंग्स। डिजिटल तहफ्फुज़ का आगाज सिम के जिम्मेदाराना इस्तेमाल से ही मुमकिन है। बर वक्त और पेश के इकदाम आपकी शनाख्त, माली तहफ्फुज़ और कानूनी हैसियत में मददगार साबित होते हैं। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पीटीए।
7: FM 24/7 365. Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
8: Only music, no RJ talk.
7: This is FM 100.
9: Come on.

0: It's 6:30 p.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Battery hai to dil ko hai aaram.
2: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
3: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और श्वाब जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
2: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
4: Kapal Family Mixture ke saath har safar khas. Umrah likhe 02111182725 par WhatsApp karein. Pack ke andar maujood code bataein aur lucky draw mein shamil ho jaein. Kapal Family Mixture laein, umrah par jaein.
2: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab वहाँ HBL.
5: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग. स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर. एडमिशन्स ओपन. फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837.
6: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मरतबा हासिल किया. जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमत, तो फिर कहीं और क्यों जाएं? तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियत. पाकिस्तान का बेस्ट बैंक, मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक.

0: पर एतबार नो पानी नो परेशानी।
1: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड। बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए। देखा ना, मिरेकल्स हैपन।

0: It's 6:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.
3: पेपा कार्ड है?
4: है तो फायदा है.

0: PM. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL. This program was brought to you by the Bal Family Mixture Line, Umrah Par Jaye, and Phoenix Laga Aur Bhul Ja, Phoenix Laga Aur Bhul Ja. HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
2: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मर्तबा हासिल किया. जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमत, तो फिर कहीं और क्यों जाएं? तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियात. पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक.
3: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड. बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका. नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए. देखा ना, मिरेकल्स हैपन.
4: पेपा कार्ड है
5: तो फायदा है.

0: आज ही अपने बैंक से बनवाएं।
1: HBO फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBO फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBO।
2: This program is brought to you by
3: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HBO ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
2: एंड पाकिस्तान का बेस्ट बैंक Mizan Bank, the premier Islamic bank.
4: And AGS tubular battery hai to, dil jo hai aaram.
5: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
6: FM 247365.
7: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
6: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
8: You're listening to the greatest radio station.

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL। This program is brought to you by
1: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
2: एंड पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
3: नशा और परेशानियां खत्म करता है, इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। मातला इल्मी, जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने, लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
4: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
5: FM 24/7 365
6: Evening Drive Time.

0: HBO फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBO फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBO। मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBO फ्रीडम अकाउंट। This program is brought to you by
1: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HBO ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
2: एंड पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
3: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है, अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकारीर, गुस्ताखाना और फाहश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नताइज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफादे आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
5: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाए।
4: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
6: मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
7: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हम इससे क्या।
4: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ही कम हूँ।
6: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
7: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
6: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
4: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
7: और इस वजन की असल हकीकत को समझे।
4: आइए वेट से आगे का सोचें।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
8: ईमेल हर अदारे के लिए एक इंतहाई अहम जराए इब्लाग है, लेकिन सिर्फ एक गलत क्लिक पूरे नेटवर्क को खतरे में डाल सकता है। साइबर मुजरिमों की जानिब से हुकूमती और निजी शोबे के मुलाजमीन को मुसलसल फिशिंग ईमेल्स भेजे जा रहे हैं। इनका क्या मकसद है? आपकी लॉगिन तफसीलात चोरी करना, सिस्टम्स को रैंसमवेयर से मुतासिर करना या गैर मजाज रसाई। महफूज रहने के लिए हमेशा ये बेहतरीन तरीके अपनाएं। हमेशा भेजने वाले की शनाख्त चेक करें, खसूसन एड्रेस। हमेशा अटैचमेंट की फाइल एक्सटेंशन चेक करें। pta.txt महफूज है, लेकिन pta.txt.exe नुकसानदेह साबित हो सकती है। अटैचमेंट खोलने से पहले जरूर स्कैन करें। ईमेल इस्तेमाल करने के बाद हमेशा लॉग आउट या साइन आउट करें। इन खतरनाक आदतों से हमेशा बचें। सरकारी ईमेल को जाती या गैर सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल न करें। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले असल URL जरूर चेक करें। क्लिक करने से पहले एक बार जरूर देखें। अपना ईमेल पासवर्ड किसी के साथ हरगिज शेयर न करें। पासवर्ड, OTP या हसास मालूमात ईमेल के जरिए कभी भी न भेजें। हैकर्स अक्सर फौरी कार्रवाई, धमकी, लालच या झूठे वार्निंग साइंस जरूर देते हैं, ताकि आप घबराकर फौरन क्लिक कर दें। अगर कोई ईमेल बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा पुरकशिश और गैर मामूली तौर पर मशकूक लगे तो एक बार जरूर रुक जाएं और इसकी तस्दीक करें। फिशिंग ईमेल से कैसे बचें? अपने आप को और अपने अदारे को महफूज रखने के लिए धमकी आमेज या जज्बाती जुबान वाली ईमेल से मुहतात रहें। नामालूम या शॉर्ट लिंक्स पर हरगिज क्लिक न करें। भेजने वाले का मुकम्मल ईमेल एड्रेस जरूर चेक करें। अटैचमेंट से खासतौर पर मुहतात रहें, खुसूसन exe.bat.vbs.msi और दीगर एग्जीक्यूटिवल फाइल से लोगो और ग्राफिक्स आसानी से जाली बनाए जा सकते हैं। इन पर अंधा एतमाद न करें। किसी भी मशकूक ईमेल की फौरन अपने अदारे की IT टीम को इतला करें। आपकी होशियारी ही पहली दिफाई लाइन है। होशियार रहें, महफूज रहें। ये पैगाम पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, PTA।
9: ये मुफादे आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
10: Facebook.com/FM247 247-365. FM 247-365.
11: Evening Drive Time.

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HPL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
2: मंशियात, एक लम्हे की गलती पूरी जिंदगी की तबाही। आइस, हेरोइन, चर्स या किसी भी किस्म की मंशियात, ये वक्ती खुशी नहीं मुस्तकिल अजियत है। ये जिस्म को कमजोर करती हैं, जहन को मफरूज करती हैं और ख्वाबों को तोड़ देती हैं। एक आदत एक खानदान की खुशियां छीन लेती है। इंसदादे मंशियात फोर्स का पैगाम, मंशियात और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ हमारा अज़्म मजबूत है। आइए अहद करें, अपने नौजवानों को बचाएं, अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। 26 जून आलमी दिन बराए इंसदादे मंशियात।

0: 100 तोला गोल्ड। बस पोर्टल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए, देखा ना, मिरेकल्स हैपन।
1: This program is brought to you by
2: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HPL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
3: FM 24/7 365
1: This public service message is brought to you by FM 100. ट्रैफिक कवानीन और इशारों की पाबंदी कीजिए, इनकी खिलाफ वर्जी काबिले गिरफ्त जुर्म है। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
4: 100 100
5: Evening Drive Time with

0: It's 8:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
0: This program is brought to you by
2: Purani gaadi chodo, nayi gaadi ka khwab pura karne chalo. Kareebi HPL branch chalo ya apply karo online.
0: This public service message is brought to you by FM 100. रात में गाड़ी चलाने के दौरान तेज रोशनी देने का मतलब ऐसा ही है जैसे दिन के वक्त हॉर्न बजाना. इसका गैर जरूरी इस्तेमाल मत कीजिए. ट्रैफिक कानून की पाबंदी कीजिए.

0: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी, एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी, एक समझदार माँ बनेगी, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी, आने वाली नस्लें संवारेगी। एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है। लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
1: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: Like us on facebook.com/FM247365

0: अपना बेला है, किस लिए अकेला है।
1: पूरे भर के गुटके हैं, बैठा रहता मुस्कड़ पे, ये सदा का मेला है, इसलिए अकेला है।
0: और इससे आखिर क्यों बच्ची सेट नहीं होती।

us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: It's 9:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga
1: aur bhul ja. तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है? ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें। मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है। इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे। सर्विस फाल करने के लिए दर्ज सेल कोड्स डायल करें। जय सार्फिन के लिए *275 हैश, जोंग सार्फिन के लिए *4004 हैश, यूफोन सार्फिन के लिए *6611 हैश और टेलीनॉर सार्फिन के लिए *342 हैश। अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीजिए।
4: ये मुफाद आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
3: कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम मोबाइल फोन सार्फिन को आगाह किया जाता है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड फाल होने चाहिए। याद रखें, अगर आपके जेरे इस्तेमाल सिम के साथ मुंसलिक शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया गया है या इसकी मियाद खत्म हो गई है या शनाख्ती कार्ड का हामिल फर्द वफात पा गया है तो आपकी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। लिहाजा किसी भी जहमत से बचने के लिए मोबाइल फोन सार्फिन को चाहिए कि जिन शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म हो चुकी है उनकी फौरन तजदीद करवाएं, शनाख्ती कार्ड की मनसूखी से मुतल्लिक किसी भी मसले के हल के लिए नात्रा से रजू करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि सिम किसी वफाशुदा फर्द के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड ना हो। अगर आपकी सिम किसी वफाशुदा शख्स के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है तो कानूनी वारिस मुतलका कंपनी के सर्विस सेंटर मजाज फ्रेंचाइजीज पर जाकर जरूरी दस्तावेजात जमा करवा कर सिम की मलकियत अपने नाम करवा सकते हैं। शनाख्ती कार्ड की बरवक्त तजदीद मोबाइल फोन सार्फिन के तसलसल को यकीनी बनाने में मददगार साबित हो सकती है। पीटीए आपकी शनाख्त के तहफ्फुज और सार्फिन को महफूज टेलीकॉम सर्विस की फराहमी के लिए पुर अज़्म है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए।
5: FM 24/7/365

0: करोड़।
1: FM 100 टाइम चेक। इट्स 10 PM।
2: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड। बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए। देखा ना, मिरेकल्स हैपन।
1: FM 100, like us on facebook.com/FM247365. FM 365. FM 100, 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान,
0: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।

0: बैटरी पर एतबार, नो पानी नो परेशानी।
1: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड। बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए, देखा ना, मिरेकल्स हैपन।
2: FM 24/7 365 Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
3: Only music, no RJ talk.
2: This is FM 100.
4: Come on.

0: FM 100's time check. It's 11 p.m.
1: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड. बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका. नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए. देखा ना, मिरेकल्स हैपन.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
2: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: बैटरी पर एतबार, नो पानी नो परेशानी।
1: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड। बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए। देखा ना, मिरेकल्स हैपन।
2: FM247365

Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

ਅੱਜ ਲੱਥਾ ਨਹੀਂ ਓ ਅੱਜ ਲੱਥਾ ਨਹੀਂ ਓ ਅੱਜ ਲੱਥਾ ਨਹੀਂ ਓ।

वेलकम बैक कहेंगे सुनो हाय दिल बेचारा ब्यूटीफुल ट्रैक जिमी खान ने गाया हुआ है और पाकिस्तानी मूवी का गाना है, अच्छा गाना है। तो सुनो सवाल की जानिब बढ़ते हैं और आज का सवाल आपसे करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ग्राउंड बना ले। हर खानदान में कोई ना कोई शख्स ऐसा जरूर होता है जो बहुत बोलता है भाई, कुछ तो इतना बोलते हैं कि इंसान तंग आ जाता है, बस कर यार भाई शुरू हो गया यार, कुछ चुप कैसे कराया जाए यार। पाकिस्तान में वैसे ऐसे लोग बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, है कि नहीं? खानदान में कोई ना कोई जरूर होता है, एक से ज्यादा ही होते हैं वैसे। फैमिली में भी ऐसा होता है कि जो फैमिली है, बहन भाई हैं, अम्मी अब्बू, इनमें भी कोई ना कोई ऐसा बच्चा जरूर होता है जो बहुत बोल रहा होता है, या अम्मी बहुत बोल रही होती है, अब्बू बहुत बोल रहे होते हैं, बातूनी, ज्यादा बोलने वाले, ज्यादा बात करने वाले, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। हाँ, तो आज का सवाल भी ऐसे लोगों के लिए, आपने ये बताना है कि वो कौन सा मुल्क है जहां पर सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं, या सवाल को इस तरह करें, सबसे ज्यादा बोलने वाले लोग किस मुल्क में रहते हैं, पाए जाते हैं, ये आपने मुझे बताना है 3636 पर। हैंगी ते हैंगी, बढ़ते हैं जनाब आपके मैसेजेस के जाने। मैं घर का सबसे बड़ा भी हूं बहन भाइयों में, जिम्मेदारियां बहुत आ गई हैं मुझ पर अब भाईजान, बड़े खुशकिस्मत इंसान है भाई आप। आप पूछ रहे होंगे यार ये नदीम भाई कैसी बातें कर रहे हैं, आपने नाम नहीं लिखा अपना, शायद जिम्मेदारियों का बोझ ज्यादा आ गया, नाम दब गया। लेकिन खैर खुशकिस्मत मैंने आपको इस वजह से किया है कि अल्लाह ताला ने आपके बहन भाइयों में आपको चुना है कि आप उनकी कफालत करें, उनका ख्याल रखें। और आपको बताऊं कि ऐसे लोगों को अल्लाह ताला बहुत तरक्की भी देता है, क्योंकि उनके उसके साथ जो है बहुत से लोगों का रोजगार जुड़ा होता है, तो अल्लाह ताला कभी खाली नहीं छोड़ता। बस आप अकीदा अल्लाह पे रखें और मेहनत करें, तो इस तरह के मैसेज करना छोड़ दें। होता है ना जिम्मेदारियां होती हैं इंसान पर, उनको लेकर चल रहा होता है। कभी किसी इंसान से जो शादीशुदा बंदा है उसे कभी पूछा है आपने यार ये तुमने इतनी जिम्मेदारियां संभाली हुई हैं अपने बीवी बच्चों की? ओए होए होए, कोई मर्द ये नहीं कहता कि मेरी जिम्मेदारी है, वो अपना फर्ज समझ के ये कर रहा होता है, यानी कि। तो खैर जो भी है भाई साहब, खुशकिस्मत इंसान है, अल्लाह ताला आपको बहुत दे, और ये जितनी भी जिम्मेदारियां अल्लाह ताला ने आप पर डाली हैं उनको पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम भाईजान, अल्लाह पाक आपको बहुत इज्जत दे, शुक्रिया। छोटी सिस्टर शहजादी, ओए अच्छा समझ गया कौन है, को बहुत प्यार और सब सुनने वालों को भी प्यार भरा सलाम। यार जी अब्दुल रहमान जई आ गया भाई, जैसे जैसे सर्दियां करीब आती है तुम निकल आते हो भाई, हैं भाई गर्मियों में गायब हो जाते हो, अब्दुल रहमान जई कहां चले जाते हो यार? पिछली सर्दियों में तो मैं फुल टाइम इस मोड में था कि मैं आऊं कोरंगी साइड पर और तुमसे मूंगफलियां खाऊं, खरीद के। खैर आजकल क्या हो रहा है भाई, मूंगफलियों का सीजन वैसे आने वाला है, मूंगफली। अच्छा यूसुफ भाई पापोश से भी आ गए हैं और तमाम सुनने वालों को सलाम कहा है, FM 100 की तमाम फैमिली को भी सलाम कहा, आंटी चाची अरूसा गुलबानो तमाम डॉक्टर इमरान भाई खिताब गुल्लाला गुफरान भाई और मेरे वाले साहब को उन्होंने सलाम कहा। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहे मुस्कुराते रहे। इसी बात पर हम हमारे प्यारे से यूसुफ भाई पापोश वाले जो है उनकी जो छोटी खुशी है, रौनक है, खुशी को गाना डेडिकेट कर रहे हैं हम। हैं जी, हैं जी, आलो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे आए है मेरे मन में तू। और जनाब मैसेजेस की जानिब दोबारा बढ़ते हैं। भाईजान कल के शो में मैंने मुनासिब नहीं समझा कि आपको बताऊं, क्योंकि कल मेहमान आए हुए थे जिशान भाई, मेरे अब्बू का ओहो इंतकाल हो गया और अब्बू मस्जिद के इमाम थे माशाल्लाह। उनके वफात के बाद अब मैं मस्जिद में नमाज पढ़ाता हूँ। आप सबसे भी दुआ करें कि भाई मेरे अब्बू के लिए 4 मंथ हो गए हैं, मोबाइल नहीं था अभी आया है। हाय सो स्वीट अब्दुल रहमान जई जो हैं, ये वो भी मैसेज मेरा ख्याल है इन्हीं का था जिम्मेदारियों वाला। तो अब्दुल रहमान हम तुम्हारे साथ हैं, ढेरों दुआएं आपके वालिद के लिए, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में बुलंद मकाम अता फरमाए, उनके गुनाहों को माफ फरमाए। और जिम्मेदारियों से मेरे शहजादे बिल्कुल नहीं घबराना। पहले तो मैं एक आम अपने लिसनर समझकर बात कर रहा था कि जो बेनाम सा मैसेज था, लेकिन आप तो हमारे दिल के बहुत करीब हैं, हमारे भाइयों की तरह हैं। तो ये अब मैं आपको बताते हुए मैं थोड़ा सा तफसील से इस हवाले से बताऊं कि मेरे शहजादे बिल्कुल नहीं घबराना, वो जाते पाक। और तो आप काम भी ऐसा कर रहे हैं माशाल्लाह से, इमामत कर रहे हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं लोगों को, वो कहां से आपकी मदद फरमाएगा अल्लाह ताला की जाते पाक, आपको पता भी नहीं चलेगा, गैब से मदद फरमाएगा। अरे वाह भाई वाह, मैंने साइलेंट पे ही नहीं किया फोन, देखें कितना समझदार हो गया हूं मैं। खैर अभी साइलेंट पे कर दिया है और आगे बढ़ते हैं। साहिबजादा साहब का मैसेज आया है, तमाम सुनने वालों को उन्होंने प्यार भरा सलाम कहा है और उन्होंने कहा है कि चाइनीज जो है वो बहुत ज्यादा बोलते हैं। जनाब आपका जवाब महफूज हो गया है। अच्छा जी, एक साइलेंट नहीं हुआ था, अभी हुआ है, माजरत चाहता हूं। और जनाब रहीम शाह सिंधी सॉन्ग सखर फ्राम मुजीब रहमान मरफानी और डॉक्टर मुनीब रहमान मरफानी, बहुत दिनों के बाद आपका भी मैसेज आया, भाई कैसे हैं आप। लेकिन रहीम शाह तो पश्तो के गाने गाता है, उसने सिंधी का गाना कौन सा गा दिया है, इस बात ने मुझे थोड़ा सा परेशान किया है। मुजीब साहब और मुनीब साहब, खैर जी और आगे बढ़ते हैं। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है, बड़े बड़े लोग आ गए भाई आज, बहुत सारे लोगों की दिल की मुराद पूरी हुई है। खुसूसी तौर पर मैं नाम भी ले सकूंगा कि जिनकी दिल की मुराद पूरी हुई है, उनमें हमारी प्यारी सी शहजादी बहना जरीन नूर है, उसमें हमारी प्यारी सी बहना अदीला है और मिर्जा साहब है गुजर खान, तो और भी बेतहाजा नौरीन बहना है। क्योंकि संजू रिटर्न उनका मैसेज आया भाई, कह रही है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, सलामती और आफियत की अनगिनत दुआएं, अल्लाह पाक हमेशा रहमतों के साए में रखे, इलाही आमीन। खुश आमदीद कहती हूँ, कहिए कैसे मिजाज और क्या हाल है। ओके टेक जनाब, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप बुजुर्गों की दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। हाय मेरा बच्चा, तवील गैर हाजिरी के बाद शामिल प्रोग्राम हो रही हूँ, यकीन है मेरी शहजादी जरीन नूर और बहुत ही काबिल एहतराम नौरीन बहना ने भूले नहीं दिया होगा। बिल्कुल सही कहा, और उनके साथ और भी बहुत सारे हैं, आपने कोशिश की होगी भूलने की मगर मगर अरे हाँ, कल का प्रोग्राम बहुत मुनफरिद और कामयाब था। जिशान कमर साहब ने माजी बहुत खूब तहरीर किया था, कुछ ख्यालात का इजहार आपकी किताबी चेहरे पर लिखा है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने सांसों की वफा के साथ इख्तिताम तक साथ रहूंगी, वफा और संजू का चोली दामन का साथ है, क्या बात है। अपना ख्याल रखिएगा, मुमकिन हो तो पहली मर्तबा आपकी दिलकश आवाज में आपकी पसंद का सॉन्ग हो जाए तो खुशी की मकदार बढ़ जाएगी, क्या बात है। और कल बज़्म में शायरी की भरपूर तैयारी की थी मगर कल के प्रोग्राम इंतखाब सचता नहीं था। नदीम जिस भी अपनों ने याद किया सबका दिल से जजाक अल्लाह कहूंगी। सलीम मेमन भैया, मिर्जा शुजात भैया, सबागुल हिनागुल,
बहुत सा प्यार। और समी छोटू का भी बहुत शुक्रिया, 3 घंटे बाद बिजली बाजी अभी आई, उसको पता था ना मैं आ रहा हूँ। किसी ऐसे शख्स के साथ रहना जिससे तुम मोहब्बत करते हो जबकि तुम जानते हो कि एक दिन तुम उसे खो दोगे, ऐसे ही है जैसे बारिशों में खेलना खुशगवार है लेकिन तुम जानते हो कि बाद में बीमार हो सकते हैं। और मजबूत रहिए, मुस्बत रहिए और अपने हासिदीन को इसी गम में मुब्तला रखिए कि आप मुस्कुरा कैसे रहे हैं, क्योंकि हसद करने वाले कीड़ों की तादाद बढ़ गई है। बात तो दुरुस्त है। नदीम तमाम जज्बात को बर्दाश्त करना और संभालना आसान है सिवाय वहम के, क्या कहते हैं आप? तमाम जज्बात को बर्दाश्त करना और संभालना आसान है सिवाय वहम के। वहम पर चर्चा करेंगे। हैं जी ते हैं जी, भजन की हो गया, चला के दिखाएं नहीं बल्कि नेक्स्ट गाने में नहीं चलाएं, हो जाए नेक्स्ट गाने में। तो जनाब अभी एक मिनट जरा इसको हम दुरुस्त कर लें, साथ ही साथ बहुत सारे काम चल रहे होते हैं। तो संजू के और मैसेजेस भी हैं, कह रही हैं वाह जबरदस्त पहला सॉन्ग है, प्यारी सी नीली आंखों वाली लंबे बालों वाली समीन बलोच को बहुत सारा प्यार। शोभी भैया की हर दिल अजीज कॉलर लिसनर है माशाल्लाह से, और शुरुआत शानदार की समरीन बलोच के नाम से और सॉन्ग से, और उसके बाद भी हमने डेडिकेट किया था और अभी फिर डेडिकेट करेंगे। हैं जी ते हैं जी, आपको ये चाहिए भैया? हाँ गुफरान भाई आए हुए ना सामने, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो जनाब क्यों ना आपको लेके जाया जाए एक और बहुत अच्छे से ट्रैक की जानिब, और ये ट्रैक जो है हम डेडिकेट करते हैं, बहुत से लोगों का नाम इसमें आएगा और उनमें सबसे पहला नाम तो है जनाब हमारे अलीमुद्दीन यूसुफ जही साहब, उनकी जानिब से तमाम लिसनर्स को डेडिकेट करेंगे। अलीमुद्दीन साहब का मैसेज हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, उसके बाद इरफान मेमन भाई को उनकी तमाम कजन्स की जानिब से डेडिकेट करेंगे, क्योंकि अभी सालगिरह वाला बच्चा है भाई, एक दिन का बच्चा है। तो जनाब बढ़ते हैं ट्रैक की जानिब, एलो फड़ो।

वेलकम बैक आएंगे सुने हो आप सबको। जेठ कदी रावी लंग जावे क्या बात है। आई होप ये ट्रैक आपको पसंद आया होएगा। और जनाब जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया उनको बता दें मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एन ए सोने। स्लीपलेस नाइट में मैं हूं आपके साथ, आपका और मेरा साथ है 3 बजे तक। आपका और मेरा साथ है 3 बजे तक। और सवाल मैंने फ्लोट ये किया है कि ये बताना है आपने कि वो कौन सा सबसे ज्यादा बोलने वाले लोग जो हैं वो कौन से मुल्क में पाए जाते हैं। ठीक है जी, ये आपने बताना है मुझे। और सिर्फ साहिबजादा साहब ने इसका जवाब दिया है फिलहाल, उन्होंने बोला चाइना। मैंने आप उनका जवाब महफूज कर लिया। आगे बढ़ते हैं जनाब और आपको एक और मैं खुशखबरी देना चाहता हूं। खुशखबरी ये है कि अभी एक आपको बीजीएम ट्राई, हाँ हाँ वही है, बोलने तो देते, आपको बीजीएम सुनाएंगे हम अपना और उस बीजीएम को सुनने के बाद आपने बताना है कैसा लगा आपको।

अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एनएस सोने। स्लीवलेस नाइट में मैं हूँ आपके साथ, आपका और मेरा साथ है जनाब। 3 बजे तक और 3 बजे तक ये हल्ला गुल्ला जारी और सारी इसमें शामिल होने का बहुत ही आसान सा तरीका, अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए, क्यों चाहे लिखिए, भेज दीजिए प्यारे सा नाम, प्यारे सा मैसेज और उसको सेंड कर दीजिए 3636 पर। इंट्रो मैंने दोबारा इस वजह से दिया, बीजीएम ने आया ना,

होप कि आपको ये पसंद आया होगा। एक दो लिंक किसी के साथ चलते हैं और इसके हवाले से भी बताइएगा कि कैसा लगा आपको। तो आपको क्यों ना लेके जाया जाए एक और बहुत ही प्यारे से ट्रैक की जानिब। और ये ट्रैक जनाब हम डेडिकेट करते हैं हमारे स्पेशली पंजाब साइड से जितने भी लिसनर सुन रहे हैं, जिनमें हमारी नौरीन महना भी है फैसलाबाद से, मिर्जा शुजात साहब है गुजर खातो, वैसे कराची में भी बेतहाशा पंजाब से लोग आए हुए हैं वो भी सुन रहे होंगे। तो उन सबको मैं एक ट्रैक डेडिकेट करना चाह रहा हूँ अपनी जानिब से।

मोबाइल जो है वो रिपेयर हो रहा है, उफरान भाई उसको रिपेयर कर रहे हैं, मेरा मोबाइल तो जैसे ही दुरुस्त हो जाएगा मेरे पास आएगा तो मैं आपके मैसेंजर्स के तमाम मैसेजेस पढ़ूंगा। यानी क्या समझ रहे हैं ना आप? और जनाब आगे बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की जानिब। कल का शो बहुत अच्छा था, कोई भी अच्छा सा सॉन्ग संजू के नाम। शहजादी बहना जरीनूर आ गई है, जरीनूर आज संजू सुन रही है, हैं जी ते हैं जी। अपनी खुशी का इजहार कीजिए, इतने दिनों से आप कह रही थी कितना पुकारूं, कल तो ये कह रही थी। ननीम अख्तर भाई आपको, आपका शो बहुत अच्छा है भाई जान, खुदा पाक आपको खुश रखे और सब सुनने वालों को सलाम। कोई अच्छा सा गाना मेरी वाइफ को डेडिकेट कर दीजिएगा, नजीर अहमद साहब के। नजीर भाई बिल्कुल कर देंगे। अच्छा भाई हमारे मुजीबुर रहमान मुजीब साहब और कहां गया उसके सिंधी सॉन्ग भी बहुत है, क्योंकि रहीम शाह की वालिदा सिंह से वंस अगेन बैक पाकिस्तान फ्रॉम इस्तांबुल। मुजीब मरफानी साहब ढूंढते हैं भाईजन, मिल जाएगा तो चला देंगे आपके लिए। साहिबजादा साहब कह रहे हैं नदीम भाई जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैसेज, किया मैं जहाज को कराची एयरपोर्ट से 4 घंटे में जहाज को अमेरिका लैंड करवा रहा हूं, जहाज अटलांटिक के बीच में है, जहाज अटलांटिक को 8 घंटे में क्रॉस करता है, मतलब 4 आवर्स रिमेनिंग टू लैंड एट न्यूयॉर्क।

वही मेरे सर से गुजर गया साहबजादा साहब की मैसेज। क्या कहना चाह रहे हैं आप? ओशन के ऊपर जो अटलांटिक ओशन के ऊपर जहाज जो है वो चार घंटे में पहुंचा है, ये खैर अभी इतना टाइम नहीं है भाई, दिमाग कितना लड़ाऊं मैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा जी सलाम सुनियो, देर लगी आने में उनको, शुक्र है फिर भी आए तो आए, हाय हाय संजू के लिए गाया इन्होंने, शुक्र है फिर भी आए हो। सबसे पहले तो संजीदा जी को शो में खुशामदीद कहते हैं, और कोई भी एक सॉन्ग संजीदा जी को आप अपनी तरफ से डेडिकेट कर दीजिएगा। आज तो उन्होंने भी कहा है भाई संजू ने कि अपनी आवाज में कुछ हो जाए, और अभी आपने ये जो कहा है ना देर लगी आने में तुमको, मेरी बड़ी फेवरेट गजल है ये। चलो संजू आपके नाम गाना है जनाब, और आपकी भी फरमाइश पूरी कर रहे हैं, और उसके साथ जो है ये फरमाइश जिन जिन लोगों ने आपको डेडिकेशन के लिए कहा उन सबकी जानिब से। पहली दफा गा रहा हूं जनाब संजू आपके लिए, कोई गलती हो जाए तो बता दीजिएगा।

फर्स्ट टाइम गाया, सुर थोड़े से डगमगाए, मगर मुझे इतना पता कि मैं ओके ठीक तरीके से प्रैक्टिस करूंगा, तो यानी कि समझ रहे हैं ना आप। अच्छा लगा संजू आ गई, मेरी दुआ कबूल हो गई आपका भी, थैंक्स आपने मेरे SMS पढ़े। जरीन नूर कह रही है जिंदगी आ गई है, जिंदगी साथ है भाई। आप लोगों ने किसी ने भी BGM के बारे में नहीं बताया भाई, ये तो गलत बात है भाई। BGM के बारे में भी बताओ ना यार, कि ऐसा लग रहा है। और जनाब जनाब जनाब मैसेज पूरे पहले हो जाए। जिंदगी कहती है बेहतरीन शो, फास्ट सॉन्ग्स, वाओ वाओ। आपकी आवाज में सॉन्ग प्यारी समरीन बलोच के नाम कर दें। समरीन बलोच के नाम तो गाना कर दिया हमने पहले, और मेरी आवाज भी हो गई, वो तो संजू के लिए थी। खैर आपकी जानिब से उनको भी कर दिया वो। अच्छा लगा, अच्छा ये तो हो गया था। एंड बाबा बुल्ले शाह के वालिद से लोगों ने शिकायत की, बुल्ला नमाज नहीं पढ़ता। वालिद ने बुल्ले शाह को आवाज लगाई, बुल्लिया तू नमाज नहीं पढ़ता, तू नमाज नहीं पढ़ता सी। बुल्ले शाह जाकर वजू करते हैं तो अपने दिल भी निकाल कर धोने लगते हैं। साहिबजादा साहब ये वाकया दुरुस्त है क्या? फर्स्ट टाइम मैं इस तरह का सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। खैर जी, जिंदगी कहती है कि ये सॉन्ग अच्छा नहीं लगा, अली हैदर वाला मोहब्बत भरा सॉन्ग कुछ हो जाए तो। और कहती है मुझे समरीन से प्यार हो गया, क्या बात है भाई, अच्छी बात है। और बहुत अच्छा सुनाया, स्कूल की याद आ गई। जरीन नूर कह रही है जीती रहो मेरी बहना, देखो जिंदगी हमारी बहन को कितना अच्छा लग रहा है, यानी कि समझ रही है ना आप, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। खैर चलें आपको ये वाला सुना देते हैं।

वेलकम बैक गुमसुम गुमसुम प्यार दा मौसम। और अब जनाब हम आपके प्यारे प्यारे से मैसेजेस की जानिब जाएंगे जो कि आपने हमें किए हुए हैं मैसेंजर्स पर। हमारे प्यारे से अब्बास भाई तारिक रोड से आ गए हैं और कह रहे हैं कि बीजीएम ओके टेक है जनाब नदीम भाई, और मेरी बीवी भी सुन रहे हैं। अरे क्या बात है, मिसेस अब्बास भी सुन रही, तो फिर इस पर कुछ ना कुछ होना चाहिए ना जनाब। कुछ ना कुछ होने से मुराद ये कि आपको कोई गाना डेडिकेट करना चाहिए अपनी दुल्हन को, यानी कि समझ रहे ना आप। तो वेलकम कहेंगे मिसेस अब्बास को, और सारा खानजादा आई हैं और कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। सारा खानजादा है जनाब, बातूनी लोग हर मुल्क में होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा किस कौन से मुल्क में होते हैं ये पूछा है। बस कुछ लोगों की बैटरी फुल चार्ज होती है और उनका माइक बंद ही नहीं होता। यानी कि मैं समझ रहा हूँ। पाकिस्तान यहाँ तो लोग बातों में बिजली भी पैदा कर सकते हैं, बस मौका मिलना चाहिए। क्या बात की है, गुड है गुड है, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है आपका सारा। और बीजीएम बैकग्राउंड म्यूजिक, जी बिल्कुल, बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो कैसा लग रहा है, ये नया है ये भी बताइएगा। और आप जो है मेरा ख्याल है फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रही हैं, आपको वेलकम भी कहेंगे। सारा खानजादा को हम गाना भी डेडिकेट करेगा। चाची हमारी प्यारी सी डियर आ गई हैं और कह रही है सलाम नदीम, यूनाइटेड स्टेट के लोग टॉकेटिव होते हैं और भूटान के लोग कम बोलते हैं। आए बीजीएम बिल्कुल अच्छा नहीं है, चाची को अच्छा नहीं लगा भाई, ये वैसे होता है, फैक्ट है। जैसे मेरा जो लास्ट बीजीएम था वो भी लोगों को बड़ा पसंद था, और ये वाला जो बीजीएम है ना बहुत आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पसंद आना शुरू हुआ था। खैर अभी हम इसी बीजीएम पर रहेंगे। और संजू क्या कहती हैं, और कहती है जबरदस्त बीजीएम। अच्छा भाई वोटिंग हो जाएगी, अभी तक तो दो वोट अच्छा ही में आ गए। नौरीन मैना और जरीन नूर के लिए कि मेरी बात की तस्दीक हो गई, अब मानती हैं, समझदार हैं दोनों मेरी दोस्त। हमारा प्यार, हमारी दोस्ती हमेशा नेक नियति से कायम रहेगी, इलाही आमीन। और जनाब अच्छा इधर ही है, अरे वाह भाई वाह, ये वाला ना, हाँ दोनों साथ ही साथ चलाते रहेंगे हम। हाँ नालो नाल। तो संजू के मैसेज के बाद आगे बढ़ते हैं, लेकिन संजू आपने जो बर्दाश्त वाली बात की थी, वहम वाली सॉरी, उस पर हम अभी कुछ ही देर में चर्चा करते हैं, हैं जी ते हैं जी। और जनाब अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब का मैसेज हम शामिल कर लें। वैसे गाना तो हमने डेडिकेट कर ही दिया है, और तमाम हसीन समातों को उन्होंने सलाम कहा है, मुझे भी सलाम कहा है। नसीम कुरैशी, अयूब अफरीदी, खिताब गुल्लाला, इमरान रियाज और मेरे वालिद मोहतरम की खिदमत अकदस में उन्होंने अकीदत भरा सलाम पेश किया। बहुत बहुत शुक्रिया अलीमुद्दीन साहब। अब्बास भाई की कंधे पे ने

9 नवंबर अक्टूबर को म्यूजिक ट्यूस्टर एक स्लीपलेस नाइट 1 से 2। हैप्पी बर्थडे है किसकी? ओहो भाभी की बर्थडे है, वो तो गुजर गई नौ, उनके बर्थडे विश करनी है। शादी की सालगिरह है मेरा ख्याल है, थम्स अप कर दे शादी की सालगिरह है। तो तबास भाई दास ही नहीं रहे। हाँ देखा ना, शादी की एनिवर्सरी है भाई, शादी की एनिवर्सरी पर तो गाना बनता है आप दोनों के लिए। बस भाई टैलेंट देख रहे हैं कैसे आपके भाई का, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। अच्छा जी पुर्तगाल और बहुत सारे चाची पूरी दुनिया के नाम लिख दीजिए आप। वैसे दुरुस्त जवाब आपने दे दिया इनमें से, मैं इतना बता दूं, इंडिया पुर्तगाल नाइजीरिया स्पेन इटली पता नहीं केड़े केड़े मुल्क लिखते। लेकिन जिस पर चाची को भरपूर तरीके से शक था वो भी इन्होंने लिख दिया। और जनाब जनाब अलीमुद्दीन साहब कह रहे हैं हाय, इस तरह ना कहा करें, कह रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरे मैसेज शामिल किया है। बीजीएम एकदम गुड है, मेरा सॉन्ग प्ले करना मत भूलिएगा मुजीबुर रहमान साहब, यकीन मानिए ढूंढ रहे हैं, मिलेगा तो जरूर चलाएंगे। रहीम शाह साहब का सिंधी गाना। जरीन नूर कह रही है अच्छा है न्यू बीजीएम, आदत हो जाएगी। हाय अल्लाह जी, जीते रहो मुस्कुराते रहो सब। शौहर बीमार था, बीवी ने खून की बोतल दी, डॉक्टर ने कहा मुबारक हो आपका खून मिल गया। शौहर ने बोला क्यों नहीं मिलेगा, 20 साल से तो ये खून चूस रही है। अच्छा लतीफ है। और रवि भाई आयाज भाई वाली तरकीब करो, लंबे ट्रैक्स को शॉर्ट कर दो। सर जी बात दरअसल ये है कि आप सही कह रहे हैं, वो मैं कभी कभार ऐसा करता हूं क्योंकि बहुत सारे लिसनर्स ऐसे हैं कि वो ट्रैक्स जो है वो सुनने के लिए बैठे होते हैं, यार गाना सुन ले यार, नदीम किशोर में गाना सुन ले। मैं गाने का बेड़ा गर्क नहीं करता, पूरा चला देता हूं। लेकिन जब वक्त की कमी होती है तब, यानी कि समझ रहे हैं ना आप, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अरे बहुत सारी मीसेज हैं भाई। हमारी जरीन मैंने ने कहा है कि जवाब इटली है, महफूज कर लिया जनाब। और नदीम भाई गाना अच्छा गाया है, बहुत बहुत शुक्रिया। नाम नहीं लिखा। गुफरान भाई को सलाम, और गुफरान भाई और आपके लिए बादाम की तलाश जारी है, बहुत जल्द एफएम पर पहुंच जाएंगे। हाय हाय क्या बात है, बीजीएम इनको भी पसंद आया भाई। गुफरान भाई आवाज आ रही है, बीजीएम बहुत पसंद किया जा रहा है भाई, सिर्फ एक वोट आया है इसके खिलाफ, बाकी तो बहुत सारे जितने भी वो चाची हमारी चाची गुफरान को बता रहा हूं, ये बीजीएम गुफरान भाई की क्रिएशन है, बहुत क्रिएटिव बंदा है ये। अच्छा जी नदीम भाई गाना अच्छा गाया भाईजान, माजी की याद ताजा कर दी, जबरदस्त की जबरदस्त किया, क्या बात है। ये नजीर अहमद साहब कोरंगी से। अच्छा नजीर भाई का एक और मैसेज था, उसमें कोई फरमाइश तो नहीं थी, मैं जरा चेक कर लूं क्योंकि मैंने नोट नहीं किया था। डेडिकेशन थी नजीर भाई की अपनी वाइफ को, तो नजीर भाई हम जरूर चलाएंगे, डोंट वरी डोंट वरी। अब मैंने तो यानी कि समझ रहे हैं ना, नोट कर लिया है जी ते हैं जी। आपका दोबारा मैसेज आया तो मुझे याद आया। और जनाब इनके मैसेज के बाद आगे बढ़ते हैं, कहां गया था इनका मैसेज, अच्छा साहिबजादा साहब वाली का मैसेज हो गया था, सलीम मेमन का मैसेज हो गया था, जरीन बहन का मैसेज हो गया था,
बीजीएम एकदम गुड है. ये भी हो गया था मुजीबुर रहमान साहब का. रेहान शाह फ्रॉम जियाउद्दीन हॉस्पिटल नाइट शिफ्ट मुझे वेलकम कर दें. क्या बात है रेहान भाई. सब लिसनर्स को और सब लिसनर्स को सबको सलाम. वालेकुम अस्सलाम रेहान शाह. आप याद रहेंगे, हमारे नए लिसनर हैं आप और आपको हम ट्रैक भी डेडिकेट करेंगे. किस तरह का गाना सुनना पसंद करोगे बता दो. हमारे बहुत ही प्यारे से अनीस भाई भी आ गए हैं. आपने सॉन्ग तो बहुत अच्छा सिंग किया और संजू को पसंद आया हो. संजू कह रही है कि हाँ संजू ने कुछ पर कुछ चर्चा नहीं की. जिंदगी ने कहा था कि कोई और गाना गाइए. म्यूजिक बेस अच्छा है. सलाम कहा है उन्होंने सबको जितने भी सुनने वाले हैं. नदीम भाई थैंक यू. नीज भाई साहबजादा कह रहे हैं मेरा नाम तो लो. अरे मेरे शहजादे हर मैसेज पर आपका नाम लिया है मुझे अच्छी तरह याद है. हैं जी ते हैं जी. वो जहाज वाले पर भी मैसेज पर भी मैंने आपका नाम लिया था. यानी कि समझ रहे हैं ना आप. संजू को गाना अच्छा लगा नहीं लगा संजू नहीं बता रही है. अरे भाई जान मुश्का गया ही मुश्किल. इतने ज्यादा मैसेज है भाई. क्या अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है हैंडसम आजी के लिए. बेस्ट विशेस. गुड शो था. आपकी शरारतें शो में अच्छी लग रही थी. जिशान सर से आपके सवाल सुनकर आप पर रश का आ रहा था. आपकी इन्फॉर्मेशन जबरदस्त है. आज टॉपिक पर खूब चर्चा कर लेते हैं. थैंक यू थैंक यू. हम ही खास मतन है इल्हाम के सहीफों का. हम जैसे आम हाशिए में कहाँ आते हैं. हशबी में कहा यार. इतना खतरनाक लिखा हुआ है ना ये आपने. गौर कर रहा हूं मैं एक एक लफ्ज सर. हम ही खास मतन हैं इल्हाम के सहीफों का. खतरनाक खतरनाक है शेर. ये मुझे मुश्क भेजना जुमेरात वाले दिन जरूर भेजना. ठीक है. जिस तरह महंगाई बढ़ रही है मेरी शादी में चाय बिस्किट का स्टॉल लगेगा और जो बिरयानी मांगेगा उसे कहा जाएगा तसव्वुर करेगी यहाँ बिरयानी थी. वाह वाह. नेट के बगैर मोबाइल भी बस एक स्लेट ही है जहाँ मर्जी पड़ा रहे हमें क्या. ये उन लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है अगर इंटरनेट ना भी हो कि जो कॉल्स. वैसे ये आपकी बात गलत है. नेट पर जो इंटरनेट पर जो जो काम हो रहे होते हैं फ्री में मैसेजेस हो रहे हैं वीडियो कॉल्स हो रही हैं बात हो रही है तो ये तो फ्री में हो रहा है. इंटरनेट के थ्रू सिर्फ इंटरनेट के पैसे दिए जा रहे हैं. लेकिन जब ये इंटरनेट नहीं था तब कॉलिंग कार्ड निकले हुए थे. घंटों बात हो रही है पब्लिक कॉल ऑफिस में. लाइन लगी होती थी लड़कों की. खवातीन भी जाती थी. घंटों बात कर रही है फोन पर. तो ये काम नहीं रुकता है. अच्छा जल्दी से मुर्तजा कजलबाश का सॉन्ग मुझे और संजू को डेडिकेट कर दें. लिख लें भूल जाते हैं. अरे कैसी बात कर दी आपने. कसम दिल खराब कर दिया आपने इस बात पर मेरा. मुर्तजा कजलबाश का कौन सा गाना चलाऊं. उसके तो बहुत सारे गाने हैं और बहुत प्यारे प्यारे गाने हैं. खैर इसी बात पर हम फौरन से पेशतर आपको सुनाएंगे मुर्तजा कजलबाश को और ये ट्रैक डेडिकेट करेंगे संजू को मुश्क की जानिब से.

वेलकम बैक कहेंगे जनाब। ब्यूटीफुल ट्रैक, मुझे भी बहुत पसंद है गाना और उम्मीद करता हूँ आप सबको भी पसंद आया होगा और संजू को एंड मुश्क दोनों को भी अच्छा लगा होगा। सारा कहती हैं जी फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया है, बीजीएम इज रियली नाइस एंड योर वॉइस इज अमेजिंग। तेरी आवाज का जादू भी कमाल होता है, सुनने वाला हर लम्हा तेरा ख्याल होता है। अल्फाज तो खत्म हो जाते हैं महफिल में मगर आवाज का असर देर तक बरकरार रहता है। भाई बहुत खूब बहुत खूब। सारा खानजादा आपके मैसेजेस हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। संजू कहती हैं मुझे सॉन्ग अच्छा बिल्कुल नहीं लगा, मुझे स्लो बेहतरीन शायरी वाले अच्छे लगते हैं। उफ अल्लाह जी, ये वैसे मुझे तो पता है आपकी पसंद का, लेकिन हमारे पुरानी जीन्स। चले थोड़ा सा आपको दूसरा गाना सुनाएंगे संजू को। संजू फरमाइश बहुत कम करती है इसलिए हम उनके लिए दोबारा गाएंगे, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। और चाची हमारी क्या कहती हैं, चाची आपने जवाब दुरुस्त दिया है, डोंट वरी। और साहब के सवाल का जवाब है इंडिया भारत के लोग ज्यादा बोलते हैं हर लम्हा दुआगों ने ख्वाहिशात के साथ, कौन हो सकता है सब बताइए। चाची अभी मैं आपको नहीं बता सकता, ना ऑन एयर और ना मैसेजेस के थ्रू, जरा समझा करें आपको बताऊंगा बाद में क्यों। आवाज भाई क्या कह रहे हैं, आए 2015 में दूल्हे बने थे हमारे आवाज भाई। अच्छा भाई, अब दो कपल्स ऐसे आ गए हैं कि जिनकी डेडिकेशन है, एक तो हमारे नजीर साहब हैं, उन्होंने अपनी वाइफ को ट्रैक डेडिकेट करना है, और दूसरा जो है हमारे प्यारे से अब्बास भाई और मिसेस अब्बास जो है, आज इनकी वेडिंग एनिवर्सरी भी है। तो गाना मैं जब भी कोई मियां बीवी का होता है तो मैं एक ही गाना शफकत अमानत अली साहब का चलाता हूं, उसमें मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे मियां बीवी एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। तो ये ट्रैक आप दोनों को डेडिकेट किया जा रहा है, हमारे अब्बास भाई और मिसेज अब्बास एंड नजीर साहब एंड मिसेज नजीर, आप दोनों के लिए एलो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे जनाब अल्फाज ट्रैक आपने सुना हो, उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा। सलीम इब्न कहते हैं ओके आपके लिए भी बादाम, ओके देन आपके लिए भी मेरी तरफ से बादाम। संजीदा जी

कहाँ भिजवाना है? सलीम मेमन कह रहे हैं पहले तुम यहाँ तो भेजो, अभी से सबको आश्रय दिए जा रहे हो। अच्छा जी, मेरा सॉन्ग भूल गए संजू के लिए। अरे नहीं मेरी प्यारी सी बहना जरीन नूर, चलाएंगे चलाएंगे, डोंट वरी। अच्छा जी, बोथ खवातीन यूज विकिपीडिया, साहिबजादा साहब नहीं भैया, उसकी वजह है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। भाईजान उस्ताद बड़े अमानत अली साहब की कोई गजल हो जाए। नजीर अहमद साहब, आज के प्रोग्राम में गजल नहीं चल सकती, उसकी वजह है गजल का हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम होता है जुमेरात वाले दिन, आप सुनते रहते हैं। अगर अगर आपने आज तक नहीं सुना हुआ तो जुमेरात का प्रोग्राम जरूर सुनिएगा, रात को 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, बज़्मे गजल बज़्मे शायरी, उसमें आपकी फरमाइश हम पूरी कर देंगे, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। इस सॉन्ग के लिए ये मेरी पहचान बन गया, अपनी स्टोरी पर लगाया था, बहुत पसंद किया सबने, आप याद आ गए थे। हाय लजी संजीव, बेहतरीन बीजीएम दिल को भाग गया, जब भी रखिएगा रखिएगा जरूर, बिल्कुल जी। और एफएम 100 भेज दे नदीम के पास, मुझे मिल जाएगा। यानी कि समझ रहे हैं ना आप। सलीम मेमन साहब, आपकी बात का जवाब भी आया। सायरा क्या कह रहे हैं? सारा, सॉरी सारा, थैंक यू, रियली नाइस सॉन्ग, थैंक यू, यू वेलकम। नौरीन भैना, आपको मैंने गाना डेडिकेट किया था लेकिन आप देर से आए। आए दुआएं मांग मांग कर हासिल किए गए लोग, दवाइयां खा खा कर भुलाने पड़ते हैं। तुम्हें सोचते रहने की आदत हुई जब से, दिल और किसी भी जाने मायल ही नहीं होता, अपनी ही जिद पर अड़ा रहता है सितमगर, जितने भी दलाइल दूं कायल ही नहीं होता। वाह भाई वाह। नौरीन महना, आपके लिए मैंने इतना अच्छा गाना चलाया था शाजिया मंजूर का, लेकिन खैर जी इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है। और हमारी प्यारी सी चाची की जानिब से हमने अजरा शब्बीर को भी ट्रैक डेडिकेट करना है, जरीन नूर का ट्रैक भी बाकी है और एक और बाकी है, बताए कौन सा। वो वाला ट्रैक जो है ना, चले थोड़ा सा सुना ही देता हूं, वो पसंद नहीं आया था इनको हमारी आवाज में। अरे क्या बात है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हैं जी हैं जी। और जनाब कहाँ गया वो ट्रैक ट्रैक ट्रैक। अच्छा मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लूं। चले जनाब, हो गई प्रैक्टिस, पहले कौन सी करता हूं मैं। तो ये थोड़े से एक दो मैं वर्ड्स सुनाता हूं संजू के लिए।

वेलकम बैक सुनियो। उम्मीद करता हूँ ये गाना भी पसंद आया होगा। ये भी नहीं आया ना तो भाई रहने दे फिर। और नरीन मैना कह रही है, नरीन भाई आपने जो सॉन्ग मुझे डेडिकेट किया था वो आप खुद थोड़ा सा गुनगुना दे। क्या हो गया भाई, सब कहेंगे कि भाई यही गाता रहता है। सितारा शेख आई है जनाब, ये फॉरवर्ड मैसेज लाया है भाई, इनका मैसेज हम बाद में पढ़ेंगे। और जनाब हमारी बेसुरी आवाज के बाद अब आपको सुरीली आवाज सुनाते हैं। और ये ट्रैक जनाब हम डेडिकेट करेंगे हमारी प्यारी सी अजरा शब्बीर साहिबा को। और चाची, हमारी प्यारी सी चाची की जानिब से

वेलकम बैक। आप बैठे हैं बालिम पे मेरी। होपफुली ट्रैक पसंद आया होगा हजरत शब्बीर जी को। अच्छा जी, एक डेडिकेशन बाकी है, वो हम जरूर पूरी करेंगे कुछ ही देर में। वाजिबुल एहतराम मोहतरम नदीम अख्तर भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। अफसोस, प्रोग्राम में डेली शरीक होने वाले किसी भी साथी ने नहीं पहचाना हर लम्हा दुआ गो, ये बंदा है ना चीज अपने मैसेज के आखिर में लिखता है। अफसोस, खैर कोई बात नहीं, हर लम्हा दुआ गो नेक ख्वाहिशात के साथ। नाम नहीं ले रहा मैं अभी भी, ऐसी बात नहीं है। हमारे प्यारे से अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब, बस हर कोई अपनी धुन में मगन है। मैं जो सवाल करता हूँ उसका जवाब नहीं दे रहे होते तो ये तो दूर की बात है, लेकिन खैर मैं तो आपको दिल में रखता हूँ ना, आप हमारे दिल के करीब हैं। अफसोस नहीं कीजिए। हैं जी, जी हैं जी। वो वादा क्या वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। संडे वाले दिन मैं खुद एफएम आकर, हाय हाय सलीम मेमन, बस संडे वाले दिन मैं इंतजार करूंगा। और तीन लोग हो गए हैं भाई, ये जहन में रखिएगा। सलीम मेमन भाई का तो खैर मैसेज हो गया, हमने एक सवाल भी किया हुआ, सवाल का जवाब भी आप लोगों को बताना है। मगर अभी थोड़ी देर पहले मैं कुछ सोच रहा था। हाँ, हमारी नौरीन बहना कह रही थी कि भाई कुछ हो जाए, हो जाए, हो जाए। हैं जी, जी हैं जी।

जी जनाब, वेलकम बैक अगेन। और सवाल मैंने आपसे ये किया कि आपने ये बताना है कि वो कौन सा मुल्क है जहां पर बहुत ज्यादा बातें करने वाले लोग होते हैं, सबसे ज्यादा बोलने वाले लोग कौन से मुल्क में रहते हैं। तो इसका जवाब डिफरेंट मुल्कों का नाम आया। मगर जो दुरुस्त जवाब दिया हमारी प्यारी सी चाची ने, हमारी प्यारी सी बहना नौरीन बहना ने भी इसका दुरुस्त जवाब दिया था, और वो कौन सा हो सकता है। अब देखिए, जैसे कि चाइना है, दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी चाइना में है। इंडिया भी कहा गया, दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी जो है वो इंडिया में है, उसके बाद चाइना का नंबर आता है। तो जहां ज्यादा लोग होंगे वहां ज्यादा बातें हो रही। मगर ऐसा नहीं है जनाब, उसकी वजह यह है कि बातूनी लोग जो होते हैं, ज्यादा बात करने वाले लोग होते हैं, वो मुल्क देखना है हमने। बोलना तो हर कोई बोलता भाई। तो वो मुल्क अब आपको बता देता हूं कि इंडिया भी नहीं है, चीन भी नहीं है, कीनिया भी नहीं है, वो मुल्क है ब्राजील। ब्राजील में लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, बातूनी होते हैं बहुत, यानी कि समझ रहे हैं ना। अच्छा, आज एक चीज मेरे जहन में बार बार आ रही थी, और देखें मेरी प्यारी सी बहन नौरीन ने वो लिख भी दिया, कहती आज लाला कहाँ गायब है। सिर्फ लाला गायब नहीं है, आज एस गुल भी गायब है, एच गुल भी गायब है, और अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब कहाँ हैं। वो हैं जनाब, अभी उनका मैंने मैसेज पढ़ा है। तो सवाल का जवाब जनाब आप लोगों तक आ गया कि वो मुल्क है ब्राजील जहां सबसे ज्यादा लोग बातूनी होते हैं। तो अभी फौरन से पेशतर हम जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारे से ट्रैक के जाने, और ये ट्रैक हम डेडिकेट कर रहे हैं संजू को, हमारी प्यारी सी बहन जरीन नूर की जानिब से। एलो फड़ो।

0: यूं ही रस्ते में हाय हाय क्या गाना है।
1: हाँ जी पसंद आया तो ना।
0: वेलकम बैक कहेंगे सुनियो और हमारे नजीर अहमद साहब कह रहे हैं भाईजान क्या बात है आपकी आलमगीर साहब का क्या बात है गुड सॉन्ग नजीर अहमद साहब थैंक यू वेरी मच। जरीन नूर कह रही है थैंक यू सॉन्ग के लिए। संजू कह रही है हाय शुक्रन रियान यूं ही रस्ते में। जरीन नूर बहुत सा प्यार आपके लिए। आवाज किस सिंगर की है जनाब? ये यूं ही रस्ते में पाकिस्तानी मूवी है उसका ये ट्रैक है और अली सेठी और आयमा बेग ने ये गाना गाया है। तो जनाब अब जो है टाटा बाय बाय का वक्त आ गया है। वक्त का बिल्कुल फुर्र करके उड़ गया और पता ही नहीं चला। और अब हम आपसे चाहेंगे इजाजत इंशाल्लाह ताला। मुलाकात जो है आपसे वो होगी जनाब संडे को दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जाते जाते एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक मुझे बहुत पसंद है मेरी जानिब से आप सबके लिए। अल्लाह हाफिज़।

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैयां।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, रहीमिया खान, मुल्तान, अबटाबाद, गुजरात, जेलम, across Pakistan. This is FM 100.
2: Assalamu alaikum, Pakistan.